कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। मेरा वजूद

आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, उनके लबों पे आज मेरा नाम आ गया।

0: contacto con mi hija.
1: Photography is a hobby, Darshan, not a career. पहले तुम अपना फ्यूचर संभालो, फिर हमारे फ्यूचर के बारे में सोचो।

हमारी सभी सुनने वालों की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब अर्ज़ुम। यह है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी के दुख और गमी हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, शादी सालगिरह विवाह संस्कार जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा बैठा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। सुनने वालों आज शनिचर शनिवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को एक शुभ सुबह शुभ दिन शुभ वीकेंड बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। सुनने वालों हर एक इंफॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 03-265-65-60 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-262-66-11। रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड के जरिए कंप्यूटर के जरिए भी हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए भी ये प्रोग्राम सुनाई देता है। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन। बस आप सभी सुनने वालों को वेलकम स्वागत किया जा रहा है प्रोग्राम भजन यात्रा में और चले भजन यात्रा प्रोग्राम में। पहला भजन हमेशा होता है हरि हरन की आवाज में सुबह सुबह लो शिव का नाम पेश किया जा रहा है हमारे सभी सुनने वालों के लिए और सभी भक्त

रेडियो SBS के जरिए पेश की गई सुबह सुबह लो शिव का नाम हरिहरन की आवाज में ये सुंदर और अति सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। शनिवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन शुभ वीकेंड पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11। भजन जो आपकी बार प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में हम आपको ले चलते हैं खासतौर पर बेला जी की आवाज में ये सुंदर भजन जो पेश किया जा रहा है।

सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पंडित जय शंकर जी की आवाज में ये सुंदर सा भजन आपने सुना। चले आपकी बार एक सुंदर राम जी का भजन पेश किया जा रहा है और होगा प्रोग्राम में खासतौर पर अशोक घरे की आवाज में ये सुंदर सा भजन।

सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। चले सुंदर भजन जो अब की बार प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आज की इस शनिवार की सुबह की प्रोग्राम में, प्रोग्राम भजन यात्रा जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS की जरिए हरिओम शरण जी की आवाज में ये सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए सुनने वालों, हम आपको ले चलते हैं अब की बार खास तौर पर श्री हनुमान चालीसा की ओर, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS की जरिए जरूर और जरूर सुनते ही रहना। आप सभी सुनने वालों की सेवा में श्री हनुमान चालीसा बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS की जरिए जरूर सुनते ही रहना।

0: रेडियो SBS की जरिए सुंदर और सुंदर श्री हनुमान चालीसा बस प्रोग्राम में पेश की गई है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं बजरंग बाण की ओर, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS की जरिए।
1: रुद्रावतार श्री हनुमान जी में भगवान रुद्र के गुणों की झलक आंचल के दीप की तरह स्पष्ट परिलक्षित होती है। श्री रुद्र शमशान वासी हैं, श्री हनुमान जी गिरिवन वासी हैं। शिव जी ने विषपान किया था, हनुमान जी ने सूर्य बिंब को ही निगल लिया था। श्री शिव जी सर्पों की माला पहनते हैं, श्री हनुमान जी को नाग यज्ञोपवीति कहा गया है। शिव जी आशुतोष है अर्थात शीघ्र प्रसन्न होते हैं। श्री हनुमान जी भी दुखों के दलदल में फंसे हुए अपने भक्तों की रक्षा के लिए तुरंत दौड़ पड़ते हैं। जिमे अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले हु हनुमाना।

सुंदर सा बजरंग बाण बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले यहां से प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से, हमारे तरफ से, हमारा पूरा परिवार के तरफ से आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए और सभी सुनने वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए हर एक के लिए शुभ सुबह, शुभ दिन के साथ और शुभ वीकेंड के साथ ये सुंदर आरती भजन पेश किया जा रहा है।

की सेवा में पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों को। एक शुभ सुबह, शुभ दिन, शुभ वीकेंड पेश किया जा रहा है जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। टूर का यही मतलब होता है कि यहां से पुरानी फिल्में, संगीतों का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जाएगी। पुरानी फिल्में, संगीतों का प्रोग्राम पेश करने से पहले

सुन वालों को बस स्वागत किया जा रहा है गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ। चले यहाँ से पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम की ओर हम आपको ले चलते हैं। आज की शनिवार की सुबह की प्रोग्राम में खूबसूरत नगमे आप हर के लिए बस पेश किया जाएगी।

0: गाना रफी साहब की आवाज में बस पेश की गई
1: है।
0: चलिए आज की प्रोग्राम में एक बार फिर से मोहम्मद रफी की ओर हम आपको ले चलते हैं। साथ में होगा लता मंगेशकर और फिल्म का नाम मैं

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले मुकेश और लता जी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया।

रेडियो SBS का वेबसाइट radio sbs.nl उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी प्रोग्राम आप सुन सकते हैं। कमल बारूद प्रोग्राम में फिल्म का नाम मन मौजी।

इस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में फिल्म का नाम मनमऊ जी, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज की ये प्रोग्राम में जो पेश की गई। चलिए गाना मुकेश और लता जी की आवाज में पेश किया जा रहा है, फिल्म का नाम आवारा, उसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना।

हसरों मीठे की गाना आप सभी ने सुना और काफी पसंद किया रेडियो SBS की जरिए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश की गई है। एक गाना बस प्रोग्राम में अभी बार पेश किया जा रहा है द फिल्म, फिल्म का नाम है प्यार किए जा। हम आपको ले चलते हैं फिल्म प्यार किए जा, उसी फिल्म का एक गाना पेश किया जा रहा है। गाना का बोल है किसने पुकारा मुझे,

मंगेशकर की आवाज में ये गाना पेश की गई, फिल्म का नाम प्यार किए या। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में, और आज का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। किशोर और आशा प्रोग्राम में हम आपको ले चल

यहाँ रेडियो SBS की जरिए किशोर एन हर्षा जी की आवाज में ये गाना बजाना भी पेश की गई है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। हसरो मीठे की ये गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। किशोर एन लता मंगेशकर प्रोग्राम में

और एन लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जरूर और जरूर सुनते ही रहना। गाता रहे मेरा दिल गाना जो पेश किया जा रहा है।

और किशोर कुमार की आवाज में आज के प्रोग्राम में जो आप सभी ने सुना रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है सभी इन्फॉर्मेशन के लिए सभी कामकाज के लिए 0325656560 इसी तार की नंबर पर हमेशा और हमेशा आप तार कर सकते हैं या तो ईमेल कीजिए radio SBS का वेबसाइट की जरिए radio SBS.NL की जरिए।

किशोर और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में मोहम्मद रफी और आयशा जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है फिल्म यादों की बारा। खूबसूरत नगमे आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है रेडियो एसबीएस के जरिए।

0: क्या करते हो?
1: क्या कर रहा हूँ?
0: भैया छोड़ो ना।
1: क्यों छोड़ूं?
0: प्लीज समझो ना।
1: क्या समझूं?
0: वो लोग देख रहे हैं।
1: अरे तो देखने दो और जलेंगे।
0: अच्छा तो ये बात है तो मैं और पास आऊँ?
1: आओ।

रेडियो SBS के जरिए खासतौर पर लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में गाना बस पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। और आज का प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना। मोहम्मद रफी एंड सुमन कल्याणपुर फिल्म का नाम फर्श

मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए एक और गाना मरहूम मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में बस पेश किया जा रहा है, जरूर सुनते ही रहना।

गाना आप सभी ने सुना, मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर के आवाज में सुनकर और काफी पसंद किया है। काफी खूबसूरत पुरानी फिल्म का गीत आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई। हम आपको ले चलेंगे लता जी की ओर, और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

के आवास में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 030-262-6611 और रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl। लता के बाद महेंद्र कपूर की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है बहारें फिर भी आएंगी।

ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए। अब की बार हम आपको ले चलेंगे लता मंगेशकर की ओर।

0: लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों, आज के प्रोग्राम में एक गाना पेश होगा मुकेश किशोर कुमार एन महमूद के आवाज में। चले मिलकर ये गाना को सुनते हैं और फिल्म का नाम है हम जोली।
1: हरिओम हरिओम हरिओम।
0: द माइटी मुकेश, द मैन विद एफ ग्रीन वॉइस किशोर कुमार और महमूद के आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।
1: बेटी, ये भारत है।
0: फिल्म का नाम हम जोली।
1: मंगल, बुध, जुमेरा, जुम्मा।

जिस घर में ऐसा धाव होता है और प्रेम का नाटक होता है उस घर को बस राम बचाए घर का।

0: तुम अभी तक हो नीचे, सुबह सवेरे जाग के पड़ गए मेरे पीछे, चांद पे दुनिया पहुंची है, तुम अभी तक हो नीचे, सुबह सवेरे जाग के पड़ गए मेरे पीछे। माफ करो, इंसाफ करो, मुश्किल बड़ी आ पड़ी, अरे ना मैं राजा ना वो रानी, वो मेरे पीछे पड़ी। यू
1: आई डोंट नो,
0: यू मैं क्या बोली जी, यू टेल मी,
1: आई डोंट नो,
0: यू टेल मी मैं क्या बोली जी। ओ बाप
1: की तरह नाच कर और गवैयों की तरह गा कर ये फैसला नहीं हो सकता, ये फैसला कल अदालत में होगा।
2: द हार्ट ऑफ द मिलियंस, द माइटी मुकेश, किशोर कुमार और महमूद की आवाज में फिल्म हम जोली का गीत आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। मोहम्मद रफी।

रेडियो SBS की सरिये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई खास तौर पर पद्मश्री मोहम्मद रफी मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में खास गाना भी आपने सुना। चले लता जी की ओर हम आपको ले चलते हैं।

गाना को पेश की गई लता मंगेशकर की आवाज में मेरे दिल में हल्की सी। अभी आपने सुना फिल्म का नाम था परसमनी, उसी फिल्म का गीत आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। चलिए अब की बार हेमंत कुमार

0: reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा।
2: मैं कुमार सानू और मैं आ रहा हूँ आपके शहर एम्स्टर्डम में।
3: मैं अनुराधा पौडवाल आ रही हूँ एम्स्टर्डम में।
1: राह में उनसे मुलाकात हो गई।
2: 6th of September, unforgettable 90s.
3: आपके लिए ला रहे हैं रागा इवेंट्स फ्रॉम हॉलैंड।
2: क्या आप अपना टिकट जल्दी से बुक कर लीजिए।
4: रागा इवेंट्स प्राउडली प्रेजेंट्स अनफॉरगेटेबल 90s लाइव इन कॉन्सर्ट द टाइगर।

श्रिया जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का ये प्रोग्राम जो है सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ये गीत पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS की जरिए अरिजीत सिंह के आवाज में गाना प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में अभी आपने सुना। लाइव के जरिए प्रोग्राम पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का और आज का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं।

रेडियो SBS की सरिये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आशा सिंह की आवाज में तेरे नैना। अभी आपने सुना गाना जो प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में अपनी बार ये गाना की ओर हम आपको ले चल।

और सभी सुनने वालों को रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। वेबसाइट होता है radio.sbs.com.au, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं।

सी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। शेरू तरफ से रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में कुमार सानू जी की ओर एक गाना जो कुमार सानू के आवाज में पेश किया जा रहा है आज के प्रोग्राम में।

कुमार सानू जी की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनवा की सेवा में। सुनवा हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीफोन नंबर है रेडियो SBS का 030-265-65-60। के बाद उदित नारायण और साधना हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीफोन नंबर है रेडियो SBS का 030-265-65-60। के बाद उदित नारायण और साधना सरगम प्रोग्राम में होगा।

उसमें गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनवल की सेवा में। एक से एक खूबसूरत गाने आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है रेडियो वेस्ट में। इसके जरिए चले उदित नारायण एनाल का प्रोग्राम में हुगम।

देने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है और लोकल टाइम का प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना। चलिए प्रोग्राम में ना ज्यादा वक्त लेते हुए हम आपको ले चलते हैं इस शनिवार की दोपहर का प्रोग्राम में, लोकल टाइम प्रोग्राम में। आप सभी सुनने वालों की सेवा में ये गाना पेश किया जा रहा है, श्रुति की आवाज में आप सुनते ही रहना किशोर मेटली, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में हजरों मीठे की आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना ये खूबसूरत किशोर मैथिली। सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए आप प्रोग्राम को सुन सकते हैं। लोकल टाइम का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है मिस्टर इबो अपनी बार प्रोग्राम में। मिस्टर इबो वाहिद हुसैन

एक मेडली सॉन्ग प्रोग्राम में पेश की गई मिस्टर इबो वाहिद हुसैन की आवाज में अभी आपने सुना। आसरो मीठे सुनकर और बेहद पसंद किया है। चलिए प्रोग्राम में काफी दिनों के बाद एक गाना पेश किया जा रहा है शहीद वाहिद हुसैन की आवाज में। पुरानी फिल्म का गीत आप सुनते ही रहना।

आज के प्रोग्राम में पेश की गई पुरानी फिल्म का गीत अभी आपने सुना, दलित शहीद वाहिद हुसैन की आवाज में। चलिए अब की बार जेरी और रकीस की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं।

आप सभी सुनने वालों को शुभ दिन पेश किया जा रहा है और चले अब की बार संजय की ओर। रेडियो SBSM शेड्यूल ट्रैक से ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है लाइव vanuit het hart van Nederland, Sher Utrecht, de mooiste stad van Nederland. उसी शहर से ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का। मिस्टर संजय

रेडियो SBS के जरिए मिस्टर संजय के आवाज में ये गाना पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.com, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं और दुनिया की कोने कोने में सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। बहुत सी सुनने वालों बस इस वक्त प्रोग्राम सुनते हैं न सिर्फ हॉलैंड देश के अंदर में लेकिन हॉलैंड देश के बाहर भी। सभी को वेलकम। और आज का प्रोग्राम जो है सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना लाइव के जरिए। ये प्रोग्राम आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। खासतौर पर स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322266611। इसी तार की नंबर पर टेलीफोन नंबर पर हमेशा स्टूडियो की ओर आप तार कर सकते हैं। चले प्रोग्राम में रोबर्टो की ओर हम आपको ले चलते हैं। आपकी बार गाना जो पेश किया जा रहा है आज के प्रोग्राम में मिस्टर रोबर्टो।

मैथिली सॉन्ग बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में मोती माला भोला सिंह की ओर हम आपको ले चलते हैं। अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है, तेरा साया जहां पर भी हो सजना।

तेरा साया जहां पर भी हो सजना। मोटी माला भोला सिंह की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है। गाना आप सभी ने सुना और काफी पसंद किया है। चलिए अब की बार उमर की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है। पुरानी फिल्म का गीत आप सुनेंगे उमर की आवाज में। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-262-66-1611।

टाइम का प्रोग्राम में जो पेश की गए हमारी बहुत सी सुनने वालों बस प्रोग्राम इस वक्त सुनते हैं। हर एक को खबर कीजिए रेडियो SBS के बारे में, हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीफोन नंबर है 03265 65 60 60। चले प्रोग्राम में आपकी बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा

रेडियो SBS के जरिए रोजाना की आवाज में ये गाना पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। आज रोमित है, गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। सुनवालो रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl, अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड के जरिए कंप्यूटर के जरिए भी उसी वेबसाइट के जरिए हमारा प्रोग्राम अच्छी आवाज में अच्छी साउंड में आप सुन सकते हैं। चले प्रोग्राम में विनेश की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

गाना जो पेश की गई विनेश की आवाज में सोना सोना लागे। रेडियो SBS की जरिए संगीत भरी स्टेशन का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है शहर यूट्रेक्ट से, हॉलैंड देश का सबसे खूबसूरत शहर से, यूट्रेक्ट शहर से, फनाउटेड मोस्ट स्टार्ट फॉर नीदरलैंड शहर यूट्रेक्ट से। ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में बॉय

0: लोकल टाइम का प्रोग्राम रेडियो SBS की जरिए पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं।
1: ये लुस्टर्ड ना मिस्टर SBS ऑफ रेडियो SBS FM।

गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। नीलम के बाद चले मिस्टर ऑल राइट की ओर। गाना जो पेश किया जा रहा है और गाना का बोल है पार्बो सहरिया मिस्टर ऑल राइट।

की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS और आज का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में ये गाना की ओर।

एस बी एस के जरिए। ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में आसर उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। सत्यम, अमरीश, नीलम और शेरोन की आवाज में ये गाना पेश की गई। चलिए प्रोग्राम में आनंद

की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा भी। चलिए प्रोग्राम भी आपकी बार अब आपको ले चलते हैं आज की इस लोकल टाइम की प्रोग्राम में। और इसी गाना के साथ मैं आप सभी सुनने वालों से इजाजत और आज्ञा चाहूंगा। आसरा उम्मीद है कि हमारा आज की लोकल टाइम का प्रोग्राम आपने सुना और बेहद पसंद किया है। कल सुबह ठीक 8 बजे मैं आप सभी सुनने वालों से फिर मिलूंगा। तो इसी गाना के साथ उम्मीद है कि हमारा आज की लोकल टाइम का प्रोग्राम आपने सुना और बेहद पसंद किया है। कल सुबह ठीक 8 बजे मैं आप सभी सुनने वालों से फिर मिलूंगा। तो इसी गाना के साथ इजाजत और आज्ञा दीजिए। हैव अ नाइस वीकेंड। शुभ वीकेंड पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही

0: klaar met nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा।
2: मैं कुमार सानू और मैं आ रहा हूँ आपके शहर एम्स्टरडम में।
3: मैं अनुराधा पौडवाल आ रही हूँ एम्स्टरडम में।
1: राह में उनसे मुलाकात हो गई।
2: 6th of September, unforgettable 90s.
3: आपके लिए ला रहे हैं राघा
2: इवेंट्स
3: फ्रॉम हॉलैंड।
4: राघा इवेंट्स प्राउडली प्रेजेंट्स अनफॉरगेटेबल 90s लाइव इन कॉन्सर्ट द टाइगर ऑफ

हेलो नमस्ते और आदाब, मैं हूँ आपकी आरजे अंशली क्रमलाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर में। हेलो allemaal, dit is uw आरजे अंशली क्रमलाल, die u van harte welkom heet in het programma गीतों के लहर। Wilt u reageren, kan het altijd, surf maar naar de website www.radiosbs.nl of bel naar de studio met 030-262-6611. Voor alle andere info kunt u altijd bellen met 030-265-6560. Dan gaan we naar het eerste liedje van vandaag en dat is...

रेडियो SBS के जरिए से आपने सुना शान और साधना सरगम की आवाज में कुछ ना कहो का टाइटल सॉन्ग, और अब आप सुनिए फिल्म रामलीला से अरिजीत सिंह की आवाज में लाल इश्क की मलहाल इश्क।

कभी दिल के करीब तुम्हें मेरे नसीब यू लाएंगे सोचा न था। बेहतरीन गाना आपने सुना संदेश सौंडलिया की आवाज में और साथ ही साथ साधना सरगम की आवाज में भी फिल्म सोचा न था से। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है फिल्म हैरी मेट सेजल से।

फिल्म निकाह से आपने सुना सलमा आगा की आवाज में, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में रेडियो SBS के जरिए से आप सुनिए। खुशियां और गम सहती हैं, फिर भी ये चुप रहती है, अब तक किसी ने न जाना जिंदगी क्या कहती है।

मेरे साथ चलते चलते ये कहाँ ठहर गए तुम, ये सफर कटेगा कैसे जो अभी से डर गए तुम, बस अयोध्या फिल्म हमको दीवाना कर गए। अयोध्या फिल्म फना कोमदा खसंग दौर कैलाश खेर एंशान चांद सिफारिश जो करता हमारी।

तालियां तो बजाओ। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूं और गाने में ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मैं

अभी अभी आपने सुना के की आवाज में फिल्म जिस्म दो से, और अब आप सुनिए फिल्म शोर इन द सिटी से श्रेया घोषाल और तोची रैना की आवाज में साइबो।

भी स्काई, फिल्म द स्काई इज पिंक से आपने सुना। और अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में रेडियो SBS के जरिए से आप सुनिए दिलविल प्यार व्यार से। हरी हरन और अलका याचनिक की आवाज में आप सुनिए तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा नहीं।

गुरनालो इश्क मिठा इस अर्ध फिल्म एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा एंड गजोंग दोर लता मंगेशकर कॉम्ट अर्ध फिल्म आरजू अजीर उठकर अब कहाँ जाइएगा जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा।

0: En nu reclame, het nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा।
2: मैं कुमार सानू और मैं आ रहा हूँ आपके शहर एम्स्टरडाम में।
3: मैं अनुराधा पौडवाल आ रही हूँ एम्स्टरडाम में।
1: राह में उनसे मुलाकात हो गई।
2: 6th of September, unforgettable 90s।
3: ला रहे हैं रागा इवेंट्स फ्रॉम
2: हॉलैंड। आप अपना टिकट जल्दी से बुक कर लीजिए।
4: रागा इवेंट्स प्राउडली प्रेजेंट्स अनफॉरगेटेबल 90s लाइव इन कॉन्सर्ट द टाइगर।

खुशी जब भी तेरी मैं कम देखता हूँ, इस गजों दूर जुबेन नौटियाल दे दी दिस सो मोय ना ना जुबेन हाँ फेर्दर मेट शफाकत अमानत अली एंड कैरलिजा, ये रात ताल आउट द फिल्म कभी अलविदा ना कहना कॉम्प्लीट लीजिए मितवा।

ये बेखुदी दीवानगी आउट द फिल्म तुमको ना भूल पाएंगे एन खसों दूर जुबे नौटियाल कॉम्त होने लगा आउट द फिल्म एंथम।

गूंजी सी है सारी फिजा, जैसे बजती हो शहनाइयाँ। आओ ना क्वम अद फिल्म क्यों हो गया ना, एन अतीस का अख्तियार दूर, विवेक ओबेरॉय एन ऐश्वर्या राय दी तैत वारस आर देते। Uit de film Want It komt het volgend liedje via Radio SBS, gezongen door Wajid en Amrita Kuk. Just love me, love me, love me.

हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की सारी रस्में हम तोड़ चले। इस अर्ध फिल्म अजनबी खजानदार आर डी बर्मन, लता मंगेशकर एंड किशोर कुमार, वासुदेव लिचे, रेडियो SBS इन het programma Gietों के लहर। एंड अर्ध फिल्म बागी 3 komt gezongen door शान एंड रोचाक, तुझे रब माना है।

ये लड़की बड़े ड्रामे बाज है, बस और द फिल्म सूरज पे मंगल भारी है, एंड और द फिल्म लव मैरिज कम्स हो जाऊंगा तो गीता दत्त करीब आओ ना।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: मेरे हाथ में तेरा हाथ है इस uit de film Fana en uit de film Roehi Afsa is het volgende liedje via Radio SBS. Kistong.

0: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: किस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा।
2: मैं कुमार सानू और मैं आ रहा हूँ आपके शहर एम्स्टरडाम में।
3: मैं अनुराधा पोरवाल आ रही हूँ एम्स्टरडाम में।
1: राह में उनसे मुलाकात हो गई।
2: 6th of September, unforgettable 90s.
3: आपके लिए ला रहे हैं रागा इवेंट्स फ्रॉम हॉलैंड।
2: क्या आप अपना टिकट जल्दी से बुक कर लीजिए।
4: रागा इवेंट्स प्राउडली प्रेजेंट्स अनफॉरगेटेबल 90s लाइव इन कॉन्सर्ट द टाइगर ऑफ